0: This is Fresh FM, a home of locally grown podcasts. Get involved and make yourself heard. It's 6 o'clock.
1: My name is Valerie Patrick, and I am the producer and host of Yumi Talem. My program is in Bishlama, and I'll bring you news, views, local recipes, and music from Vanuatu. Join me on Sundays from 6 p.m. in the evening, Yumi Talem, only on Fresh FM.
2: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।

0: 238. Grab your crew, put your trivia skills to the test, and get ready for brains, banter, and big quiz energy.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।